0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी कपड़ा
0: कपड़ा।

आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड जाइडियो, वेलकम यू टू अनदर एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया, विच कम्स टू यू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। It has always been a pleasure to bring you some of the greatest hits of yesteryear, and so we invite you to stay tuned to the voice of Guyana as we begin this melodious joyride, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. Tremaine Clark is on the console, and we start the program with a song taken from the film Madari, Dil Lootne Wale Jadoogar.